0: असमानता
1: कशाला बदाय आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी
2: गुरु प्रसाद जा का मिटे महान सो जन नाम कर के परवान
1: कोट कर्म करा हो तार स्वर्ण पावे सगले बिरथारी
0: अनेक तपस्या करे अहंकार नर सुख फिर अवतार
1: अर्क जतन कर आत्म

0: विचार
1: अपना जान मुझे प्रत परिय
0: जन जन सत्र हमारे मरिय
1: तेग तेग जग मैं दो चले
0: राग आप मोय और न तले
1: तुम मम करो सदा प्रत पारा
0: तुम साहे मैं दास तिहारा
1: जान अपना मुझे निवाज
0: आप करो हमरे सब काज
1: हो सब राजन के राजा
0: आपे आप गरीब निवाजा
1: दास जान कर कृपा करो मोहे
0: हार पर मैं आन द्वार तोहे
1: अपना जान करो प्रत पारा
0: तुम साहिब मैं किंकर थारा
1: नास जान दे हाथ उबारो
0: हमरे सब बैरियन संगारो
1: प्रथम तरो भगवत को त्याना
0: बोर करो कविता बिदनाना
1: किसन जथा मत चित्र उचारो
0: चूक होए कबले हो सुधारो
1: कब बाच दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहा सो कहे हो जग माहे
0: जोते प्रभ को त्याए है अंतर को जाहे
1: दोहरा हर हर जन दोई एक है वेब विचार कछ नाहे
0: जाते उपज रंग जो जल ही बिकै समाहे
1: दोहरा जब आयस प्रभु को पयो जन्म तरा जग आए
0: अब मैं कथा संक्षेप ते सबहु कह तु सुनाए
1: कब बाच दोहरा ठाड पयो मैं जोर करे

0: देह मोह कोटक बिशन महेश
1: कोट इंद्र ब्रह्मा के राक्षस क्रोर जलेश
0: दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत
1: स्वर्ग बासुरग बरकरा सगरी पुरी समेत
0: चौपाई जो है कथा सुने अर गावे
1: दुख पाप ते निकट मावे
0: बिशन भगत की ये फल होई
1: आंध ब्याज सके न कोई
0: सम्मत सत्रह सहस पचावन
1: आड़व दी प्रथम सुख दावन
0: प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा
1: कुल परी लोह ले हो सुधारा
0: दोहरा नेत्र तंग के चरण तर सतद्रव तीर्थ रंग
1: श्री भगवत पूरण की ओर अकबर कथा प्रसंग
0: साध असाध जानो

गुरु प्यारी सत्संग जी, करो रसना पित्र, कोई भी रसना बांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सारे ही भागां वाले हाँ जो गुरबाणी दे नाल जुड़ के अपने स्वासा दी पंजी नूं सफल कर रहे सी। अज 7 बजे तो 8 बजे तक सानू कथा विचार दे नाल जुड़नगे संत बाबा सेवा सिंह जी, रामपुर खेड़े वाले, 7 बजे तो लैके 8 बजे तक। हुण साडे गुरु घर दे हजूरी राखी भाई हरबख्श सिंह जी 7 बजे तक आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन दे नाल जोड़नगे। करो रसना पित्र, कोई भी रसना बांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

संसार कर्म करना चाहिए। जे ना करांगे तो फिर सतगुरु का हुक्म भी है, सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठा मुक्त न हो भी जिचर शब्द ना करे विचार। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। भाई गुरदास जी ने एक होर उदाहरण जन दिया कि एक सवीए विच कहिंदे कोई मनुख रास्ता पुछदा है। एक नूं पुछ लिया कि मैं इस शहर जाना, सैक्रामेंटो जाना जां किते जाना। उसने दसता कि आ सड़क लै ला, अगों दूसरी एग्जिट लै ली और सीधा तू उत्थे पहुँच जावेगा। दूजे कोलों पुछ लिया, तीजे कोलों पुछ लिया, चौथे कोलों पुछ लिया। निरा पुछी ही जांदा है पर तुरदा एक कदम भी नहीं गा। तो भाई गुरदास जी सानू एक सवाल करते हैं, निरा पुछी जाण वाला मनुख अपनी मंजिल उत्ते पहुँच जाएगा? आपां भी कहेगा नहीं पहुँचांगा, पहुँचेगा? भाई गुरदास जी भी कहिंदे नहीं पहुँचेगा। दूजी फिर उदाहरण उन्होंने दिती है, जिस तरह कोई डॉक्टर परसाए बीमार है उहदे कोल चला जांदा है, डॉक्टर उन्होंने दवाई दिंदा है, पथ परहेज दसदा है, पर ना तो डॉक्टर की दवाई खांदा है ना पथ परहेज रखदा है। भाई गुरदास जी सानू पुछदे है कि आप दसो ऐसे रोगी का रोग दूर हो जाएगा? आपां भी सारे ना विच उत्तर देवांगे कदी नहीं दूर हो सकता कि दवाई खावांगे तद ही रोग दूर होवेगा, पथ परहेज रखांगे तद ही दुख दूर होवेगा। एक तीजी होर उदाहरण देना कीती है भाई गुरदास जी ने, कहिंदे एक घर दे विच बड़ा सुख शांति है, बड़ा अमन अमान है, कदी उन्हां दे घर विच लड़ाई झगड़ा नहीं होया। एक नागे ही गुआंढी है, उन्हां दे घर विच रोज़ गाली गलोच हुंदा और हथो पाई भी हुंदे है। वो बीबी जिहड़ी आ दूसरे घर, जिन्हां दे घर विच बड़ा प्यार है, इतफाक है, सुख है, शांति है, उन्हां दे घर भी जांदी है, जाके भैन पुछदी है, भैन तुहाडे घर विच कदी झगड़ा नहीं होया, कदी डांग सूटा नहीं होया, कदी तुसी उच्चे उच्ची बोलदे नहीं सुने, कारण की है? वो भैन दसदी है, भैन उच्ची कादे लई बोलना, झगड़ा कादे लई करना, जो मेरा पति कहिंदा है वो जे ठीक गल होवे मैं सत करके मन लैनी है, जे कुछ उन्हां दी सोच विच गलत होवे मैं उन्हां नूं सलाह दे दिंदी हां, मेरा पति सत करके उस नूं स्वीकार कर लैंदा, आपां रल के एक दूजे की सलाह दे नाल चलदे हां, ते झगड़ा कहदा? पुछता लियांदा नुकसा उसने दस दिता, घर विच चले गई है और उधरों दोपहर का वेला पति काम तो आया, उसने आन के कहना कीता भलीए मैं सारा दिहाड़ी काम करके आया, मैनू ठंडे पानी का गिलास दे। तां ते अगों घरवाली ने कहना तेरे हाथ टुटे आ, सामने फ्रिज है उत्थों पै लै ला, जे पानी आम पीना टूटी तो लै ला। वो अगे सदिया होया आया सी काम तो, उसने आदियाँ दो चार जड़ दित्तियां, घर जिहड़ा नरक का रूप धारण कर गया। कलगीधर पातशाह जी ने प्रमाण किया इस साखी का, कहिंदे पानी के मांगे पाथर मारत, मंगिया पानी तो मोहरों पत्थर लै के पई है, पानी के मांगे मारत पाथर, नार के दो कर नाहर आनी। कहिंदे स्त्री है कि शेरनी है, जदों इस प्रकार का टकराव हुंदा तो हो ही जाता। इस प्रकार भाई गुरदास जी अखीर विच तत कढ़दे आ, पहला आपां उन्हां उदाहरणां नूं वाच लईए। कहिंदे पूछत पाथक ते मार्ग न धरे पग, प्रीतम के देस कैसे बातन सजाइया। पूछत है वैद खात औखद न संयम से, काहे मिटे रोग सुख सहज समाइया। पूछत सुहागणी के कर्म दुहागणी के, हृदय व्यविचार कत से जा बुलाइया। आखिर विच फरमान करदे आ, कहिंदे गाएं सुने आंखें मीचे।

नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुर

0: काल से जगत बनायो आदम ते की उतार नमस्कार तुसी कुमार शुकन को सगुन सुख दियो घर घर के अंतर की दानत चीटी ते कुंतर सुला
1: सर्वपर कृपा बिष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी एक एक की पीर पुशाना
1: कट कट के पट पट की जाने
0: उत्तर प्राकृत तारा
1: जा तर तब दे
0: तारा जा जा तर तू का बहू
1: मैं मृत दे पर सब हूँ
0: ये तो बाजा नशे कर
1: आप आपनी बुझ चार है
0: तू सब ही तेरे अंदर आ रही
1: हूँ अंत देव फेरे अरे आलम
0: रंग काम रुक काम रलंब
1: शंकर काल निकट में है
2: ਸੋਨਿਹਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ

ਉਰ ਧਾਰ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸਰਮ ਵਿਖਾ ਭਗਵਾਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮ ਠਾਕ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹੋਇਆ ਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸ ਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਤੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹਿ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਰੂਪ ਨਾ ਭੀਖੈ ਨਿਯਤਰ ਸਾਧਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨਾ ਕਾਹੁ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਕੋ ਮੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖੇ ਉਪਰ ਹਰੈ ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ਇੰਦਰੀ ਜੇਤ ਪੰਜ ਦੋਹ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਧੀ ਕੁ ਐਸਾ ਪਰਸ ਵੈਸਨ ਸੋ ਜੇ ਸੁਪਰ ਸੁਪ੍ਰਸਾਨ ਵਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੀ ਹੋਈ ਭੇਨ ਕਰਮ ਕਰਤ ਵੈ ਨਿਹ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸਨ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਕਾਹੁ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹਿ ਬਾਛੈ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਰਾਜ ਮੰਤਰ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ਸਭ ਉਪਰੋਧ ਕਿਰਪਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਅਵਰਹਨਮ ਜਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਵੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਨਤੇ ਬਿਨਸਾ ਸਗਲਾ ਪਰਮ ਕਰ ਪੂਜਾ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੂਵੈ ਤੁਸ ਭਗਵਤ ਕੀ ਮਾਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ ਮੰਤਰ ਨਰ ਪਾਵੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਿ ਕੇ ਚਨ ਹਿਰਦਾ ਬਸਵ ਨਾਨਕ ਸਭ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਸੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਪੰਡਿਤ ਕਾ ਉਪਦੇਸ ਜਾਗ ਜੀਵ ਹਰਿ ਕਥਾ ਹਿਰਦਾ ਬਸਵ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾਵੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਪੂਜਾ ਮੂਲ ਸੁਖ ਮਹਿ ਜਾਨ ਸਥੂਲ ਚਹ ਵਰਨ ਕੁਦੀ ਉਪਦੇਸ ਨਾਨਕ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ ਦੀਸ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚਹ ਵਰਨਾਮ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸਕੀ ਗਾ ਤੋ ਸਾ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਵਰਤਾਰ ਪਸ ਪੀਰ ਮੁਗਦ ਪਾਥਰ ਕਵਤਾਰ ਸਰਬ ਰੋਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਹੁ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨ ਵਾਸ ਤਿਸਕੇ ਨਾਮ ਸਤਿ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾ ਤੁਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰਿਆ ਦਸ ਦਸੰਤਰਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਓ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੁਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਭਿਨੰਦ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਸ ਦਾਸ ਕਹੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰ ਸਗਲ ਸੰਗਾ ਤੁਮ ਉਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਣ ਤੈਸੀ ਉਸਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਵਰਤਾਇ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਕ ਜੇਤ ਜਿਤ ਕਰ ਰੱਖ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾ ਵਿਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੁਣ ਹੋਗ ਪਸਰੀ ਆਪ ਹੋਇਆ ਨ ਤਤਰੰਗ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈ ਸਿਮੈਤ ਦੀ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਬਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮ ਨਾਨਕ ਪੈ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਿਹਾ ਨੀਕ ਜਾਣੇ ਅੰਤ ਨਾਮ ਪਾਰਾਵਾ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹ ਬੇਦਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਆਹ ਹਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਤੀਰਥਵਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸੁਰ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਨ ਕਰ ਤਿਕੰਤ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗਾ ਤੁਮ ਨਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ੍ਰਮ ਵਾਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦੇਹ ਪ੍ਰਮਾਹਿ ਜੇਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤੇਤ ਤੇਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨ ਕਰਤ ਕੀ ਜਾਨ ਕਰਤ ਰਚਨ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜ ਰਹਿ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪਿਆ ਪਾਇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਦਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੀਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਆਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਾਤਰ ਸਗਲ ਸਮਾਗਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਜਿਹ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨ ਹਤਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਰਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਣ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤਿਨੇ ਰਹਿ ਸਭ ਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਆ ਭਾਰ ਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗਨ ਵਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹਮਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹ ਜੋਨੀ ਫਿਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤਹੀ ਖਾਹੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲ ਹੈ ਥਕ ਪਾਹੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿਚਿੰਤ ਜਹਿ ਜਹਿ ਪਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੱਥ ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੀ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ ਤਿਨ ਕਉ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਇਆ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੀਜ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
कई कोट खाण अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत किन विस्थार कई बार बसरी उपासार सदा सदा कई कंकार कई कोट किन भपात प्रवद प्रमात ताका अंत न जान कोया पिया नान प्राव सोई कई कोट पार ब्रह्म के दास दिन हुवत आत्म प्रकाश कई कोट तात के वेद सदा निहार है कु नेत्र कई कोट नाम रह पीव हमर पय साध साध जीव है कई कोट नाम गुण गावे है तुमरा स सुख सहज समाव है अपने जन का सास सा सुमारी नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रावीक है दूसरा नाहीं कोई नानक तह बलहारण जाल थल मही रसोई अष्टपदी करण करावन करण जोग जोध पावे सोई होग खिन मह था प्यो था पुनर अंत नहीं किस पारा बार हुक्म तार अतार रहावे हुक्म उपजा हुक्म समावे हुक्म ऊंच नीच व्यवहार हुक्म अनक रंग प्रकार कर कर दीख अपनी उड़िया नानक सब मह रह सुमाई प्रभु पावे मानुख गात पावे प्रभु पावे ता पाथर त्राव प्रभु पावे बिंसास्ति रख प्रभु पावे ता हर गुण पाखे प्रभु पावे ता पतति धरा आप कर अपन विचार दुह श्रिया का स्वामी खीरा विकसेंद्र जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर नयावे कहूँ मानुख ती किया हुए आवे जो दिख पावे सोई करावे उसके हाथ हुए ता सब की शैलिए जो दिख पावे सोई करिए अन जानत बिखिया महरा जय जय जानत अपना जय परम पुला देह देह तावे निमुख माही चार कुंड फिराव कर कृपा जो सबने भगत दिए नानक ती जन नाम मिली खिर में नीच गीट कर राज पार ब्रह्म गरीब नवा जा कर दृष्ट कशु न आवे तेस तत्काल देह देह प्रगटावे जा कौ अपनी कर बख्सिता का लिखा न गना जगदीश जियो पिंड सब की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बणत आप बनाई नानक जीव दिख बड़ाई उसका बाल नाही सहाथ कर्म क्रम सर्वनाथ आज्ञा करि बपरा जियो जद पाव सोई हन थियो कबहू च नीच मह बस कबहू सो घर खरंग हस कबहू निंद चिंद ब्याव हार कबहू बस पायाल कबहू बीत ब्रह्म जा नानक मेला बणहार कबहू निरत कर बपात कबहू सोय रह दनरात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व गोद्रवाल कबहू हुए बह बड़ राजा कबहू बेखार निज कर साजा कबहू आप कीर्तन है कबहू पला पला कह जो प्रभ रख तुभ रह गुरुप्रसाद नानक साज कह कबहू हुए पंडित करे बखियान कबहू मन तारी लावे त्यान कबहु तड़ तीर्थ स्नायन कबहु से साधु मुह ज्ञान कबहु गिढ़ हस्त पतंग हुई जी आनक जन परम वै परम आनन रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावत वन चावा जो पावे सोई हुए नानक दूजा वर्ण कोई कबहु साधु संगति हो पावा स स्थान ते बाहर नाय आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान कर नहीं बिनाया सुमंत नामृति करंग सदा बस पार ब्रह्म का संग जीव जाल मह जलाय खटान त्यों ज्योति संगजोत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कह साधु कुरबान सलोक सुखी बस मस्किन आवनवार तली बड़ी बड़ी अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपद झकांतर आज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वयं जो जाना मैं जो बनवंत सोवत विष्टा का जानता आप सकाओ कर्म वंत कहावे जन्म मर बह जोन परमावे तन पूम का जो कर गुमान सुमूर्ख अंध अज्ञान कर कृपा जस कह हृदय गरीबी बसाव नानक ई हा मुक्ता का सुख पावे धनवंता हुई कार करवावे त्रिगुण समान काश संग न जावे बहुलस कर मानुख ऊपर करियास पर पितर ताको हुई बिना सब त्याव जाना बलवंत खेनवा हुए जय बसमंत किसा न बदाप अहंकारी धर्मराय तस्कर खुआर गुरु प्रसाद जाको मिट अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कूट कर्म कर अवतारी श्रम पावे सगले व्यर्थारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहंत्रावे हर दरगह कह कैसे गावे आवश्यक जो पला कहवे तो सब पलाई निकट न आवे सर्व किरण जाको मन हुए कह नानक ताकि निर्मल सोय जाब लाग जाना मुझ तिकाश होता विस्काओ सुख नाह को जाब ही जाना मैं किश करता तब लाग करु जो मैं फिरता जब तार को बैर मीत तब लाग नीह चल नाह चीत जब लाग मुह मग्न संगवाई तब लाग तरमराय दि सजाई प्रभु कृपा ते बंधन टूटा गुरु प्रसाद नानक हव छूटा सहस खटी लाख कौठ तावे त्रुपत न आवे माया पाछा पवन भोग बिखिया की करे न त्रुपतावे खाप खाप मरे बिना संतोख नहीं कुराज
सुपन मनोरथ वृथि सब काय जय नाम रंग सर्व सुखोय बड़भागी के सब प्राप्त हुई कर्म करावना पिया सदा सदा नानक हर जाप कर्म करावन करने हार उसका हाथ कहा विचार जैसे दृढ़ करे तैसा होया पिया आप प्रभु सोय जो किसकी नौ सपना रंग सब ते दूर सब हु कै संग बुझाय दिखा करा बबी का पही का पहानी कुमारा नम सवन जाय नानक साध ही रहे समाया बुद्धि सह समझया पापि रचया सबके साथ हब की नवन विस्तार सब कह शो सकह करण यार उसते पियंदा कह हो कि सोय था अंतरांतरी कह सोय अपने चलत आप करण यार कौत कर रंग आप आर मन मह आप मन अपने वाह नानक कीमत कहना जाय सात सात सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद कना वखिया न साच साच साच सब की ना कोण मध कना बिरला ची ना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी काट कट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रिय सलोक संत सरण जो जान पर सो जन उदरन हार संत की निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपति संत का दुख न हर जकट संत का दुख जमती नहीं छुटा संत का दुख न सुख सब जाई संत का दुख न नरक मह पाए संत का दुख न बात हुई मलिन संत का दुख शोभा दिहीन संत के हति का रखे न कोई संत का दुख थान प्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग नंदक पी तारा संत के दुख ते मुख पावे संतन का दुख कागज लवे संतन का दुख न सर्प जोन पाए संत का दुख न त्रिगत जन किरण वाये संतन का दुख तृष्णामा जलै संत का दुखन सब कुशल है संत का दुखन तेज सब जाय संत का दुखन नीच नीचाय संत दुख कथा को नाह नानक संत पावे ताऊ पीगत पाहि संत का नंद को महातताय संत का नंद खेन टिकन न पाए संत का नंद को महातियारा संत का नंद परमेश्वर मारा संत का नंद राज तिहीन संत का नंद दुखी यार दीन संत के नंद कहो सर्व रोग संत के नंद कहो सदा बजोग संत के नंदा दुख मह दुख नानक संत पावे ता उसका पी हुए मोख संत का दुख सदा पवित संत का दुख कसा का नहमित संत के दुख का उडान डाग संत के दुख का सब त्याग संत का दुख मह अहंकारी संत का दुख सदा बकारी संत का दुखी जन्म मर संत के दुख ना सोते टाराय संत के दुखी को ना ठाक नान संत पावत नहीं मिलाय संत का दुखी अद बीज दे टूटा संत का दुखी के तह काज न पा हो जाए संत के दुखी का उदयन परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर तीर्थ था जो सास बिना मृतक किलो था संत के दुखी की जड़ किसना है अपन बीज आप ही खाही संत के दुखी का आवरण रख नार नानु संत पावत नहीं ओ बार संत का दुखी बेल लाए जो जल भी हुन बछली तड़ फटाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यो पाव की धन नहीं त्राप संत का दुखी छुटे अकेला ज्यो बुआड़ तेल खेत माह दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत करत नंद का द्रोही पया नानक ज्योति पावे सुख थिया संत का दुखी विकट रूप हो जाए संत का दुखी का दरगाह मिला सजाए संत का दुखी सदा सह पाईया संत का दुखी ना मरा ना जी वाईया संत के दुखी की पूजा ना आसा संत का दुखी उठ चला निराशा संत का दुख ना दृष्टा कुल जा पावे तसा कोई हुए पया करत न मेटा कोई नानक जाना सचा सुय सब काट दसके ओह करने हार सदा सदा तिस कहो नमस्कार प्रभु की उस्तत करहु दिन रात तिस हित आवह सास गिरास सब कछ वरत का किया जैसा कर दह को थिया अपना खी लाभ करने यार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दी बड़ पागी नानक जन सी श्लोक तज हस्यान सुर जन हो सिमरहो हर हर आई का सहर मन रख हो नानक दुख परम पाओ जाय अष्टपदी मानुख की टीक वृथि सब जान दीवन कोई का भगवान इसका दिया रह अघाई बहुन तृष्णा लाग आय मार रख कुआ मानुख कह कृष्णा हाथ जिसका कुंभुज सुख होए तिसका नाम रख कंठ पुरोय सिमर सिमर सिमर प्राव सुय नानक विघ्न ना लागा कोय उस्तत मान महकार निरंकार कर मन वीरि सत व्याव हार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहिला कर लिहि जियो नैन पीख ठाकुर का रंग सह संग बिन सह सब संग चरण चला ओ मार गोविंद मिटिह पाव जप यार बिंद
कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर्गन अनुकूल मथ बिड़पागी ती जान जग माहि सदा सदा हर के गुण गाय ही राम नाम जो करह विचार से तनवंत गण संसार मान तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान हूँ तीय सुखी कुएक एक पछान तो सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपना सो जाय दुखी जान हूँ तृष्णा बो जाय सा संग हर हर जह कहत सर्व रोग त्यूह हर जन रहत अन दिन कीर्तन कीवल बखिया अन ग्रहत मैं सो निर्वाण एक उपर जिस जन के आसा दुख घट के जम के फासा पार ब्रह्म जिस मन पूख नानक दिसह न लागह दुख जिस कह हर प्रभ मन चित आवे सो संत सोहेला न हुडलावे जह प्रभ अपना कृपा कर सो शिव कह किस दे डरा जा सा सा दैसा दृष्टाया अपने कार्य में आव समाया सोदत सोदत सोदत सी जिया गुरु प्रसाद तत सब बूजिया जब दीखा तब सब गुरु नानक सो सुखम सोया स्थूर नह किस जन्म नह किस मर आपन चरित आप ही कर आपन जावन दृष्ट अदृष्ट आज्ञा कर तारे सब श्रेता आप सगन आपन जुग तराच था पियो था अविनाशी नाह किश खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अपीव पुरख प्रताप अब जपाय तनानक जाप जिन प्रभ जाता सु सुबंत सगल संसार उदराय तिन बंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसार नापी मील लय कृपाल गुरु का सब जाप भय निहाल उनकी सेवा सोई लाग जिसन कृपा करह बड़ पाग नाम जबत पाव है विश्राम नानक तिन पुरख गौतम करम आयन जो किश करय सो प्रभ के रंग सदा सदा बस हर संग सहज सुभाय हुआ सो हुए करण हर पुछाण सु प्रभु का किया जन भी ठलगा न जैसा सा तैसा दृष्टा न जिह ते उपजे तिस माहि सुमाय उज सुख निदान उन्हु बने आई आप सको आप दीनो मान नानक प्रभु जानी को जान सलोक सर्व कला पार पूर प्रभु व्यर्था जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गंड नार गोपाल सर्व जी आप प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन बाहि तिस ते व्यर्था कोई ना हेरी मन मेरी सदा हर जाप अविनाशी प्रभाप आप आपन किया कशु न होए जी सब प्राणी लूचा कोय तिस बिना नाही तेरा किश काम गत नानक जप एक हर नाम रूप बंद होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता हुई क्या को गर्भ है जहाँ सब किश दिखा दिया दरवे तो सूरज जी को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे जी को हुए बह दातार तिस दिन हार जन गावार जिस गुरु प्रसाद तूटे हव रोग नानक सो जन सदा रोग जीव मंदर काओ थम थमन त्यों गुर का सब मन अस्थमन ज्यों पा खान नाव चढ़ तर प्राणी गुर चरण लगत नह तर जवान कार दीपक प्रगास गुर दर्शन दीख मन हुई विगास ज्यों मह उदयान महबारक पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तेन संतन की बाछा तूर नानकी हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाई है पूर्व लिखी का लिखे पाई दुख सुख प्रभु देवन हार वर त्याग तू ते सहचार जो काश कर सोई सुखमान पूला काहे फिर अजान कौन बस्त आई तेरा संग लौट रही रास लोभी पतंग राम नाम जब हृदय वाही नानक पात सीति कर जाहि जस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब मान लिखु मन मोल राम नाम हृदय महतोल राधखी संत है संचाल वर्त्याग विखे जंजाल तन तन कह सब कोय मुखूजल है दर्ग है सोए एहो वा पार बिरला वा पार नानक तक सदवर हार चरण साधकी तुए तुए पीवर साधु को अपना जीव साधकी दूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़ पाई पाई है साधु संग हर कीर्तन गाय अनक बिगंदे साधु राख हर गुण गाय अमृत राह चाख उठ गहि संत है दराया सर सुख नारंग तिह पाय मृत कहु जीवाल नर पूख कहु देवत आधार सर्व निदान जाकि दृष्टि वाहे पूर्व लिख का लहण पाहि सब किस देह का करण जोग तिस बिन दूसरो वह न हो जप जान सदा सदा दिन रहणी सब तिऊच निर्मलिह करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जान निर्मल थिया जाका मन गुर की प्रतीत तिह जान आवे हर प्रभु चीत भगत भगत सुनि आय तिहु लोए जाक हृदय को सच करणी सचता की रह सच हृदय सन मुह कहत साची दृष्ट सच आकार सच वर्त सच पासार पार ब्रह्म जन सच कर जात नानक सो जान सच सुमत श्लोक
रूप नारी खनरंकिश त्रिहुगुणति प्रापिन्द तिसि बुझाय नानका जस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्राप मन महराख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस्ति पर नाह किश कोय सर्व निरंतरी कुसया बिना पिता न गहर गंभीर गहीर सजान पार बन परमेश्वर गोविंद कृपन धान दयाल बख्शांद साध तेरे की चरण पाओ नानक मैन इहु अनराय मन सब पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण परण जाका नीत्र फोर तमंत्र ना जान होर अनद रूप मंगल साध जाक सर्वथोक सुनि करताक राज महराज योग मह जोगी ताप मह तपी सर ग्रस्थ मह भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का गिने अंत न पाया जा की लीला की मेद नाय सकल दिवारी अब गाह पिता का जन्म की जान पूत सकल पुर अपना सूत समवैत ज्ञान ध्यान जिन दी जनदास नाम ति आवह सिय तिहु गुण मह जा को परमाई जन्म मर फिर आवै जाई ऊज नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जा नन रूप नन जाके रंग नन भीख कर है एक रंग नन वेद किन व्यस्थार प्रभ अवनाशी कंकार नन चल करी खिन वाहि पूर रही पूर्ण सब ठाई नन वेद कर मनत बनाई अपनी कीमत पाई सब काट तिसकी सब तिसकी ठाऊ जब जब जीवन नानखर नाम नाम के तारी सगरे जंत नाम के तारी खंड ब्रह्मांड नाम के तारी सिमरत वीत प्राण नाम के तारी सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारी आगा सुपातार नाम के तारी सकल आकार नाम के तारी पुरिया सब पवन नाम का संगोद्रे सुन श्रवण कर कृपा जसा अपना नाम लाय नानक चौथी पादमा सो जनगत पाय रूप सात जाक सत्य स्थान पुरख सात केवल प्रदान कर दू सात सात जाक बाण सात पुरख समाह समाणी सात कर्म जाक रचना सात मूर सात सात उत्पात सात कारणी निर्मल निर्मली जिस बुझाई तिसा सा पली सात नाम प्राप्त का सुखदाय विश्वास सात नानक गुरति पाए सात वचन साधु उपदीय सात दीय जन जाकर दय प्रवेश सात नर बूझ जे कोई नाम जब तागी का तोय आप सात किया सब सात आप जाने अपनी मेत गात जिसके श्रेष्ठ सो कारण आरव न बूझ करत विचार करते कि मेत ना जाने किया नानक जो पाव सुबर दिया विस्मन विस्म पै विस्मार जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभु के रंग राज जान रहे गुर के वचन पदार्थ लहे हुए दाती दुख काटना हर जा का संग तरा संसार जन का शिव सोबड़ पाएगी जन का संग क्लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पाव श्लोक आद सच जुगाद सच है पिय सच नानक उसी पिय सच अष्टपदी चरण सात सत प्रसन्न आदि पूजा सात सत शिवदार दर्शन सात सत विखंडार नाम सात सत त्यावन हार अव सात सत सवतारी अभिगुण अभिगुणकारी शब्द सात सत प्रवक्ता सुरत सात सात जस सुनता भजन हर को सात सब हुए नानक सात सत प्राव सो सात स्वरूप रदाय जन्मान करण कराम गुरु पुछा ने जा कर दय विश्वास प्रभाय तत् ज्ञान तिह मन प्रगटाया पैति निरपाव हुई बसाना जिहति उपजया तिह महस मन वस्त महल वस्त गडाई ताको पियन न कहना जाई बुग जाय बुग जनार बबीक नारायण मेरे नानकीक ठाकुर का शिव का आज्ञाकारी ठाकुर का शिव सदा पुजारी ठाकुर के शिव कै मन पर दी ठाकुर के शिव के निर्मल रीत ठाकुर का शिव का जाना संग प्रभु का शिव नाम का रंग शिव का प्रभु पालन नारा शिव की राखन रंग कर सो शिव क जह दया प्रभु दार नानक सो शिव क सास सास मार अपने जन का परदा टाक अपने शिव के सर पर रख अपने दाह को दी बढ़ाई अपने शिव का नाम जपाई अपने शिव की आप पात राख है ताकि गात में तो कोई न लख है प्रभु की सेवका को नाम पाहु जय प्रभु के शिव पूजते हो जय जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दह प्रगटाया नीकी किरी मह कल राख भस्म कर लस्कर को लाख जिसका सास न काटते आप ताको राखत दी कर हाथ मानस जन्म करत बात तिसकी कर्तव्य व्यर्थ जात मारा न रख वरना कोई सर्व जिया का राख सोय कहे सूझ कर हरि प्राण जप नान प्रवलख वरण बैर बैर बैर प्रभ जपिया पी अमृत हुमान तंत्र पिया नाम रत्न जिन गुरमुख पाया तिस केश वरण दृहटाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख नाम का संग नाम रस जो जान त्रिपता निमान तन नाम है नाम समानी
ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੁਭਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਸਦਕਾਮ ਬੁਗਲਹ ਜਹ ਜਿਹ ਬੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਜਨ ਕਿਨ ਦਾਤ ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਜੋ ਹੁਆ ਹੁਵਤ ਸੁਵ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੁਛਾਨ ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨ ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਇਕ ਨਾ ਜਾਨ ਵਾਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਹਜੂਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਵੀਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੀਹ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੇਨ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਛਾਤ ਸੋ ਜਾਨ ਸਰਵ ਥੋਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਸਰਣ ਸਰਵ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਤਿਸਕਾ ਦਰਸ ਪਾ ਮਿਟਾਵਹਿ ਅਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਰੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮਨ ਜਾਨਾ ਹੁ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੂੰ ਸਤ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਵ ਤਿਸਕਾ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰਾ ਨਾਨਕ ਅਰੁਗਨ ਕਾਵਸ਼ਟ ਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਾਰ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤਿਆਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਧਾਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜਪਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਰਤ ਪਦ ਸੁਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੀ ਅਨਾਲ ਸੰਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹ ਸਹਿਆ ਉਸ ਕਉ ਕਾਰ ਕਾਸ਼ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਨ ਅਵਰਦ ਸਤਿ ਆਵੈ ਮਨ ਵਿਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੋਇ ਨਿਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸਕਾ ਹੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਸਾਬ ਕਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤ ਲੀ ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸਰੇ ਦਹਿਰ ਨਾਵਨ ਕਬੈਰ ਗੁਰ ਕਬਰ ਜਾਉ ਸਰਵ ਨਿਦਾਨ ਜੀ ਆਕਾ ਦਾਤਾ ਅਠ ਪਹਿਰ ਉਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਹਾਵ ਨਹਿ ਕਹਿ ਪਰਮ ਸਹਿਸ ਸਿਆਨ ਪਲਾਇਆ ਨ ਜਾਈਆ ਨਾਨਕ ਸਗੁਰ ਬੁੜਭਾਗੀ ਪਾਈਆ ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਪੀਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਾਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਵੀਰ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨ ਰਵਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਕਵੈ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਗਾਨੀ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੁਮ ਪਤੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖੇ ਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੀਖ ਹੋਇ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹਿ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਹ ਪਾਈ ਗੋਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਬੀ ਕਹ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਇਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਯਤ ਕਰਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਣੇ ਹੁਹਾਰਾ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋਹੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿ ਗੁਣਤਾ ਸਾਠ ਪਹਿਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਲਈ ਅਸਾ ਜਪਦੀ ਅਸਾ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਸੰਗ ਨਾ ਲੀਏ ਮਾਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੀ ਕੁ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿਤ ਵਿਨਾਸੀ ਤਬ ਤੁਮਾਹਿ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਅਨੰਤ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੀ ਪਾਈ ਜਨ ਬਨ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਪਾਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਪਾਉ ਹੋਏ ਬਸ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਦੇਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ ਸਾ ਸੰਗ ਜਾਪਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਪ੍ਰਾਮ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਾ ਸਰਵਨ ਨਿਰਗੁਣਾਵ ਸਰਗੁਣ ਪਿਉ ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਨ ਸਗਨਿ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਪਾਏ ਹਾਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਇ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰੀ ਕੋ ਸੁਯੋਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਰਾਜ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਤਾ ਹਰੀ ਅਨਕ ਪੈ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਧਨਾ ਚਾਲ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰ ਹਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਹੋ ਤਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਲ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰੀਕ ਸਿਮਨਾਮ ਆਧਾਰਿ ਔਰ ਪਾਪ ਸਮੀਤ ਬਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹੁਰ ਤਾਰਹੁ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੁ ਨਾਮ ਹਰਵਾਥਿਉ ਤਨ ਸੰਚਹ ਹੋਵਹ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਕ ਨਿਰਮਲ ਮੰਦੀ ਕਾ ਸਰਾਖ ਮਨ ਵਾਹੀ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹਿ ਜਿਹ ਤਾਨਕ ਚਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾ ਵੈ ਸੋ ਤਾਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ਜਿਸ ਸੁਖ ਨਿਤ ਵੈ ਛਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਾਵ ਕਰਹ ਭਲੀ ਕਰਨ ਸਾ ਸੋਭਾ ਪਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣ ਅਨਕੇ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖ ਦਲਾਈ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹਰ ਕੇ ਨਾਇ ਦਹ ਦਹ ਤਾਵ ਤਾਵ ਠਾਇ ਤਾਕ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰ ਦੈ ਬਸ ਹਰ ਸੋਏ ਕਾਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ਪਾਉ ਬਿਨ ਸਭ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਤੁਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਤ ਕਾਰ ਜਾਇ ਬਸ ਅਵਨਾਸੀ ਕਹ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਵਰ ਸੁਕਾ ਚੁਕਾ ਚਯ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੀਵ ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਨਕੀ ਉਪਾਵ ਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੀ ਸਿਮਰਤ ਸਾ ਸਤ ਵੀਦ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹੋ ਮਨ ਲਾਇ ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲ ਸਥਿਰ ਤਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
सदमीत कुटाम्बर बनतायंती कहु तुमकम सनाथ राज रंगमय विस्तारयंती कहु कम छुटकार आस हस्ती रथ असवर चूठा डंफ चूठ पासारी जिन दिए तिह बुझा न बिगाना नाम विसार नानु पुछता ना गुर की मैत तू लिह एन भगत बिना बह डूबे सियान हर की भगत करहु मन मीत निर्मल होय तुम्हारो चीत चरण कमल राख मन वाहि जन्म जन्म की किल बिख जाहि आप जपहु अबरा नाम जपाव सुनत कहत रहत गात पावहु सारपूत सतर को नाउ सहज सुभाई नन कुन गाव गुन गावत तिर उतर समैड़ विंस जय होम बिख फैल हुहि अचिंत बस सुखनाल सास ग्रास हर नाम सुमैल छाड़ सियन सगली मन सत्संग पाव सजन हर पूंजी संज कर व्याव हरि हर सुख दरगह जयकार सर्व निरंतरी को दीख कहो नानक जाके मस्तक लिखे को जापी को सलाही सिमरी को मनाही के गुण गाव अनंत मंता जापी को भगवंती को एक एक हर आप पूरन पूरह प्रव्यापनक विस्तारी दिपैक अराध प्राशत गय मंत्र अंतरिक प्रव्रता गुरु प्रसाद नानक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभाया पर्यात शरणाय नानकी प्रवीन्दी अपनी भक्ति लाय अष्टपति जाचक जान जाच प्रवदान कर कृपा दिव हर नाम साध जनकी मांग तूर पार ब्रह्म सरदा पूर सदा सदा प्रभु की गुण गाव सा प्रभु तुम्ह त्याव चरण कम सिंह लाग प्रीत भगत करो प्रभु की नित नित कोटि को आधार नानक मंगना प्रभु सार प्रभ की दृष्ट ओ महासुख हर पर बिरला को जिन चाख्या सी जान तृपता ने पूर्ण पुरख नहीं रुलाने सुब्र परि प्रेम रस रंग उपज चाऊ साधु कै संग परि शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिबलाक बुढ़ पागी जपिया प्रभ सो नानक नाम रति सुख होय शिव की मनसा पूरी पय सतगुर ते निर्मल मातलय जन को प्रभ हो दयाल शिव की न सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दुख प्रम गया ये छुपुन सरदा सब पूरी राव रहया साध संघ जुरी जिसका सा तिन लिया मिलाय नान भक्ति नाम समाय सुखम बिसरा जी काल न पान सुखम बिसरा जी किया जान सुखम बिसरा जन सब किश दिया सुखम बिसरा जी जीवन जिया सुखम बिसरा जी अगन महाराख गुरु प्रसाद को बिरला राख सुखम बिसरा जी विखति काट जन्म जन्म का टूटा गाड गुरपुरे तति है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो का मन त्याग जब हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव आप जब अवरह नाम जो पाव भगत पाय दर्ग संसार बिन भगति तन हो सी शार सर्व कल्याण सुख निध नाम गुडत जात पाय विश्राम सगल दुखावत नास नानक नाम जप गुंता सुभजी प्रीत प्रेम रह चा मन तन अंतरि स्वाव नेत्र पेख दरस सुख मन बिगस साध चरण तुय भगत जनक मन तन रंग बिरला को पाव सांगिक बह दीजा करमया गुरु प्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कहीं न जाय नानक रहया सर्व समय प्रभक संदीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व खड़ा करत प्रत पाल आदि पुर कारण करता रूपक जनक प्राण आधार जो जो जपै सोह पनीत भगत पाई लावे मन हीत हम निर्गुण या नीच अजा नानक तुम्हरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाई एक निमख हर की गुण गाय अनकराज भोग बढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई वह भोजन का पर संगीत रसना जापति हार हार नीत परि करणि सुब तनवंत हृदय बसी पूर्ण गुरमंत साध संग प्रवधि हनवा सर्व सुनैन प्रगा श्लोक सरगुण निर्गुण रंकार सुन समाधि आपन किया नानका पिहि फिर जा बष्टपति जब अकार हो काश न दृष्टि ताप आपन ताप कह दियोता जब तारिया अपन सुन समाध ताप बैर विरोध किस संकुमात जब इसका वरण चिहन न जावता हर शोक कहु किस व्यावत जब आपन आप पार ब्रह्मता मूह कह सुबत परमापन खीरावर तीजा नानक करण हार न दूजा जाओ उत्प्रव की व्रतनी ताब बंद मुकत कहो किसको गण जबी कह हर गम पार तब नरक स्वर्ग कह कौन अवतार जब निर्गुण प्राभ सहज सुभाई
ताब शिव सकत कहु कित ठाए जावे आप है आप अपनी जो तर ताब कवन निडर कवन का डर अपन चल ताब करने हर नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुखा अपना सन तह जन वरन कह कह बिना संजय पूर्ण करता ब्रह सोय तब जम की त्रास कह हो किस होय जाब अवगत अगोचर प्राविका तब चित्र गुप्त किस पूछत लिखा जाब नाथ निरंजन अगोचर अगधि तब कहूँ छुट्टि कन बंधन बाधि अपना आप ही अचर जा नानक अपन रूपा भी अपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैड कह हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अवमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कह किस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव तह किस पूख कवन त्रवताव करण करावन करण हार नान करति कह नह समार जब अपने शुभ अपन संग बनाई ताब कवन वायु बह मित्र सुत पाय जह सर्व कलाया बह परवीन तह वीद कतीब कह कुचीन जब अपना पुआ उर तार तव सगन अप सगन कह विचार जह अपन ऊचा अपनाव नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचीरा विस्मन विस्म रह विस्माद नानक अपन का जान हो आप जहाँ शाल शेद पेद समाया ऊहा के सब माया आप सौ आप आदिश देह गुण का नाह प्रवीस जह एक भगवानता तह कौन अचिंत कहला गचिंता जह अपन आप आपति आरा तह कौन कथा कौन सुन निहार व्यंत ऊज तुज नानका उसको आप पाहूचा जह प्रचिव प्रपंच कार तिहु गण वह किन विस्तार पापो न तह पही कहावत कुंडरक कु स्वर्ग वंशावताल जाल माया जंजाल हाँ मैं मोह परम व्यापार दुसू हमान अपमान अनक प्रकार की वो बखिया न अपन खील आप कर दिख है खीर संकुच तो नानकी कह जह अवगत भगत तह आप जह पसर पासार संत प्रताप दुह पह कया पह तनि उनकी शोभा अनुह बन या पह कवत कर अनंत चोज आप है रस भोगन निर्जोग जह पावत सापन नाय लावे जह पावत खील खिलावे भी सुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलावह त्यों नानक दास बोलय सलोक जी जंद के ठाकुर आप वरतनार नानक को बसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हारे आप ही का विस्तार जात पावत श्रेष्ठ उपाय अपना पाण ले सुमाई तुम ते पेन नहीं किश होया अपन सूत सब जगत पुरे जा को प्रभ जियो आप जाय सजना सोय जन पाए सो सम दर्शी तत् कबीरता नानक सग श्रेष्ठ का जीता जिया जंत्र सब ताक हा दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राख है तिस कोय न मार सो मुआ जिस मनह विसार तिह ताज अब्र कह कु जाय सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाक सब हाथ अंतर बहर जानु साथ गुण निदान व्यंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूरे दयार सब उपरोध कृपाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जम रहु व्याप रतपाल जी वह पात जो जो रचियो सोत सहत यात जह पावत लय मलाय भगत करे हर की गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्य करना नानक एक जाने जन लागो हरि का नाय तिसकी आस न व्यर्थि जाय शिव का शिवा बनाय कुंभुज परम पद पाई ति ऊपर नहीं विचार जक मन बसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजा गुरु की पैर लोक सुखी है पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप मेले सद संग मिल करह आनंद गुण गायब हुरा परमानंद राम नाम तात करह विचार दुर्लभ दिह का करह उदयर अमृत वचन हर गुण गाय उपरांत तन कह स्वाय आठ पहर उपरा पीख नीरा मिटा ज्ञान बिंस अंधीरा सुनपदीस हृदय साव मनिच्छे नानक फल पावह हरत पलत दुए लिहु स्वार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसात सज परीखिया मन तन नाम जप लिबलाय दुख दर्द मंत्र पाओ जाय सच व्यापार करहु व्यापारी दरगह निव है खीप तुम्हारी कटी करखु मन वही नानक बहर न आवह जाहे तिहति दूर कहाँ को जाय उबराय राख नार दया निरुपाव जप सगल पाव मिट प्रभ कृपा दि प्राणी छुट जब प्रभ राख तस नाह दुख नाम जब मनोबत सुख चिंता जाय मिट अहंकार
ਤਿਹ ਜਾਨਕਾ ਕੂਏ ਨਾ ਪਹਚਨਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਗ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਾਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪੀਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ ਧਨ ਸਿਵਾ ਸਿਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਜਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਦਨ ਹਾਲ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਲ ਅਮਰ ਪਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੀ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਸਗਲ ਸਿਮਿਗਰੀ ਏਕ ਸਕਟ ਮਾਹਿਨ ਕਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹਿ ਨਾਉ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹਿ ਮਹਿਸ ਕਬ ਸਰਾਮ ਸੁਨ ਸਮੈਦ ਅਨਹਤ ਨਹਿਨਾਦ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਸਮੈਦ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਸਾਪ ਦੇਖਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੁਬਹਿਰ ਅਨੰਤ ਕਟਕਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ਤਰਨ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਇਆਲ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲ ਬਾਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸੀ ਸਮਾਹੀ ਤਿਸਤੇ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾਉ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਹੋ ਪਾਉ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਮਹੰਦੀਖ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੀ ਅਤਰ ਮਹਿਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੁ ਡੋਲੈ ਸਰਬ ਕਲਾਕਾਰ ਖੀਲੈ ਖੀਲ ਮੋਲ ਨ ਪਾਈਆ ਗੁਣ ਹੈ ਅਮੋਰ ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ ਤਾਰ ਰਹਿਓ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਹੂ ਵਿਸਾਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਭੀਖਮ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਿਹ ਸੋ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਹਰਹਿਤ ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਆ ਸਾਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਾਤ ਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਗਰੀ ਉਤਪਾਤ ਤਿਹ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਹ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹ ਭਾਵੈ ਤਿਹ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਆ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਆਰ ਪੂਰਾ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸਬ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨਾ ਬੁਝਾਈ ਸਰਬ ਭੂਤਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਣਾ ਵਿਖਨ ਰਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਰ ਤਨਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁਨਾ ਵਨਜਾਨ ਖੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀ ਨਿਮਾਇਆ ਸਭ ਕਹਿ ਮਦ ਲਿਪਤੋ ਰਹਿ ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਆ ਗਿਆ ਆਵੈ ਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਉਰੈ ਕਹੁ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦਾਤਨ ਕੀ ਆਪ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਚ ਧਰਿ ਸਭ ਸਾਚ ਊਤ ਪੂਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਜ ਤਾ ਕੀ ਗਾਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਤੁਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੀ ਹੋ ਜਾਨ ਜੋ ਜਾਨ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭ ਸੁਯੁਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਾਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਸਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਾ ਨਾਵਨ ਕਹਿ ਸਵਾਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇਹ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾ ਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਸਟ ਪਾਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਨ ਉਪਦੇਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੀਖ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗ ਹਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰਹੁ ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਪਰਲਿਹੁ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਤਸੰਗ ਪਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਦਾਰਹੁ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਪੀਓ ਚਿਤ ਚਿਤ ਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਵੈਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਕਾਇ ਹੈ ਆਧਾਰ ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧਕੇ ਬਚਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਹੇ ਰਤਨ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਾਨ ਲਾਗ ਹਰ ਰੰਗ ਜੈ ਜੈ ਸਬਦਨਾਹ ਦੁਆ ਜੈ ਸੁਨ ਸੁਨ ਅਨੰਦ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਗਾ ਜੈ ਪ੍ਰਗਟਿ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੀ ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੇ ਦਿਨ ਕਾ ਸਾਥੀ ਸਰਨ ਯੋਗ ਸੰਸਰਣੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮਿਲਾਏ ਮੇਟ ਗਏ ਵੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ
ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੈ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵ ਅਗੀ ਸੇਵ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤਿਰਹਿਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਸਨਾ ਕਹਿਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭ ਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸ ਸੋਦਨ ਧਾਨ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਕ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ ਸਭ ਤੀ ਊਚ ਪਾਇ ਅਸਥਾਨ ਬਹਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੰਜਨ ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭਦੀ ਖਿਮਸਾ ਤ੍ਰਿਉਦ ਨਵ ਨਿਦ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬਤਹ ਸਿਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਤੀ ਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਸਨੈਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੇ ਮਧ ਸਗਲ ਤਿਉ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਵਿਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਬਨ ਸੁਨੇ ਹੁਨੇ ਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੂਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿਤਾ ਗਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸਸਤ੍ਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ ਸਗਨ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵੇਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮਤੀ ਛੁਟੈ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਈ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਆਏ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੁਨਾ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਹ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਜਨਮ ਵਰਣ ਤਾਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੀਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਕ ਨਾਮ ਮਨ ਵਹਿ ਸਮਾਨੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੀ ਪੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੀ ਕਰਮ

जन्म मरण दुख जाए, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, वडहंस महला पहला। बाबा आया है उठ चलना, एहो जग झूठ बसारो वा, सच्चा घर सचड़ सेविए, सच खरा सचारो वा।

आत्महत दिवस रात दोई दाई दाया खिला सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दशमी छपा शांत प्रसाद चक्कर चिहने अर वरण जात अर पात नैन देह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह। अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश संतोष कहिजा कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गनिजा तिर भवन महीप सुर नारे सुर नीत नीत बन त्रन कहत त्वै सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्ण सुमत भुजंग प्रया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काय नमस्तंग जाय नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्म नमस्तंग धर्म नमस्तंग नाम नमस्तंग ताम नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग वाहे नमस्तंग अठाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग शेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सोएका नमस्तंग अनेका नमस्तंग भूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग नरकर्मे नमस्तंग नरपरमे नमस्तंग नरदेशे नमस्तंग नरपेशे नमस्तंग नरनामे नमस्तंग नरकामे नमस्तंग नरताते नमस्तंग नरकाते नमस्तंग नरतूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग लोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग नरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग तरमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग वाहे नमस्तंग तरवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग भंगे नमस्तंग गम्मे नमस्तस्त रम्मे नमस्तंग जलाशय नमस्तंग नराशय नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अधिसंग देशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निर्दामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवा नमस्तंग पेवा नमस्तंग जनमे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग वरणे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरार नमस्तंग करतार नमो सर्व तंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हरता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी शांत प्रसाद रूप है नूप है जू है बू है लेख है भेख है नाम है काम है अते है पे है जीत है पीत है तरमान है निदान है तरवर्ग है सर्ग है नील है नाद है जे है जाद है अजन्म है वर्ण है भूत है भरण है गंज है भंज है जूज है जंज है मीक है फीक है तंद है बंद है निर्बूज है सूज है काल है जाल है लाह है जाह है अनंत है महंत है लीक है नरसरीक है निर्लंब है सम्भ है गम है जम है अपूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है अबाह है गाह है मान है निदान है अनेक है फरेक है भुजंग प्रजा छन नमो सर्व मान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखिये पेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व अनंगी नाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी नामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकंग बिना नेक लंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरम परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी भरमी भोगी भुगते नमो योग योगेश्वरम परम जुगते नमो नित नारायणे करूर करमे नमो प्रेत प्रेत दिवसु धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं सनानंग नमो अंतर मंत्रंग नमो जंतर जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी रूपे रूपे समस्त निवासी सदा सेद दा बुद्ध दा बृद करता अदो उर्द अर्दंग अंग ओंग हरता परम परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदीय भेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी शान जले हैं थले हैं पीत हैं वे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं भेस हैं प्रियंग प्रजा छन अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समस्ति निदाने नमस्तंग दरनाथे नमस्तंग परमाथे नमस्तंग अंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे खिजे भिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चर प्रसाद त्वया प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे अखल धर्म ला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भूता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल सन त्वया प्रसाद आद रूपन आदमूत जोन पुरखे पा सर्व मंत्र मान दे पेवाद उदार सर्व पाल सर्व काल सर्व कोपन काल जतर तत्र बराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नारी ख्याल पुरख उदार मूत जोनाद शेख देश और न भेस जाकर रूप रीख नाराग जतर तत्र दिशा विशा हुई फैली अनुराग नाम काम हीन पेख ताम हूं न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानता हेक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव भेव न जानी जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जानी के देव तात्मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चकर बकर फिर चतर चाक मानी पुरती लोक चौधरी के बिखा जाग जाप ही जे जाप आ देव नाद मूर्त थाप्यो सब जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरखे पार सर्वस्व रचियो स्वयंभव घन भंजन हार काल हीन कला संयुक्त काल पुरख अदेश धर्म धाम सु परम रात भूत लख भेस अंग रांग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीकान उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंग हीन भंग नात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगनता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग रीख परम वेद पुराण जाके नित भक्त नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वचित मद पार संतया प्रसाद गुण गान उदार महिमा पार आसन भंग उपमा नांगल भव प्रकाश निस दिन।

एहो जग झूठ पसारो वा सच्चा घर सचड़ सेविए सच खरा सचियारो वा। धन गुरु नानक दे पातशाह महाराज फुरमान करते हैं कि हे परमात्मा दे प्यारिया, जेड़ा भी जीव इस संसार दे उते परमात्मा ने भेजिया है, जो भी जीव इस संसार दे उच्चे आया है, सदा इत्थे रहन वास्ते नहीं आए, इत्थे बहन वास्ते नहीं आए। ये जेड़ा संसार है झूठ दा पसारा है। ते की करन वास्ते आया है? सच्चा घर सचड़े सेवी है, सच खरा सचियारो वा। जेड़ा ता जी मनुखा जन्म दे विच आ के उस परमात्मा दी भगती करदा है, उस परमात्मा दी बाणी पढ़दा है, पातशाह कहिंदे ने उहदा जेड़ा जीवन है वह पवित्र हो जाता है, उहदा इस संसार दे विच आया सफल ही हो जाता है। पर जेड़ा बाणी नहीं पढ़दा, सिमरन नहीं करता, नितनेम नहीं करता, उस परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता, पातशाह कहिंदे ने उहनूं फिर उहदे जीवन दे विच फिर विकार आ जांदे ने।

अचल अविनाशी सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मल नासी सतगुर चरण कमल रित धारण गुर अर्जन गुण सहज विचारन गुरु राम।

जीवन की यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल पर पहुंचना चाहिए है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस के उत्ते शब्द उचारदे हैं, कहते हैं

अलाइवनेस का जो सोर्स है अकाल पुरख वाहिगुरु जो है कहिंदे ओह जिसने मन दे विच वसिया है सिर्फ ओ जिंदा है बाकी होर कोई भी जींदा नहीं है। एक परम च है कि असी जींदे हैं कि असी सारे अपने मतलब के सोच सकते हैं कि असी जींदे नहीं हैं कि असी सारे अपने मतलब के सोच सकते हैं कि असी बीमार हैं कि असी अपने मतलब के सोच सकते हैं कि सानू जीना नहीं आता कि असी अपने मतलब के सोच सकते हैं कि असी परिवारक जिंदगियां दे विच संताना अजहियां पैदा नहीं कर सके जो अकाल पुरख वाहिगुरु दे प्यारे हो कि असी अजिहा सोच सकते हैं कि साढ़े मैरिड जो रिलेशन्स हैं मैरिज दे जो रिलेशन्स जो हैं ओह आत्मक हैं स्पिरिचुअल हैं ओ एक दूसरे दी रूहानी यात्रा पूरी करन दे वास्ते एक सपोर्टिव हन कि यही रियलिटी है। इन्हां दा सबना दा जवाब आप जी ने अपने अपने अंदरों लभ लैण समा होर इजाजत नहीं दिंदा। गुरु बाबा जी ने आख्या है मेरी ते जीवन दी यात्रा सफल हो गई है तुहाडे जीवन की यात्रा का की बने तुसी कित्थे पहुंचे हो ते जे पिछे महाराज तुसी ही दस्सदे हो असीं कित्थे पहुंचे हैं वो कहिंदे तुसीं इत्थे पहुंचे हो कि तुहानू हाले ये भी नहीं पता जी दा किस तरह है तुहानू हाले जीना ही नहीं आया जीण का मकसद ही नहीं पता जीवन कादे लई है ये भी नहीं पता। तो कीर्तन सत्संग सुनने का भाव कोई ए म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी कोई एंटरटेनिंग दे वास्ते नहीं होंगे हाँ अंदर कोई ऐसी बाणी दे नाल जाग लियानी है अवेयरनेस लियानी है अवेकनिंग पैदा करनी है ताकि असी इन्हां सारे पॉइंट्स के प्रति सोचना शुरू करिए इन्हां उत्ते रिफ्लैक्ट करिए असी एक कह सकते हैं कि असी गुरु बाबा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे सिख हाँ क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी एना एना इशूज के उत्ते अपनी विचार देंदे हैं। साड़ी यात्रा सफल क्यों नहीं होंगी सानू जीना क्यों नहीं आता उहदे विच की मिसिंग है की साड़ी अवेयरनेस जो बाहर है उसकी विचार कल की जाएगी। ये लड़ी इस तरह चलती रहेगी। गुरु चुकती खेमा जीवन की विद ना है इस पंक्ति नु याद रखियो रात नु सौण वेले भी इस ते रिफ्लेक्ट करियो कर जाके आपस विच एक दूसरे दे नाल इस सारे थॉट प्रोसेस नु फिर द्वारा शेयर करियो ते होर भी किसी दे नाल शेयर करियो क्योंकि दिस द बेस्ट वे टू लर्न दैट वंस यू लिसन समथिंग देन गो एंड शेयर विद समबडी। ऐसा ना होवे कि लंगर दे विच बैठ के सारी गलबात ही तब्दील हो जाए then we forget everything। उसका अर्थ यह होया कि असी सुनाण वालियां दा भी टाइम वेस्ट किया और अपना भी टाइम वेस्ट किया। सानू शांति दे नाल क्वाइटनेस दे नाल चुपचाप होके अंतर ध्यान होके लंगर छक के चले जाना चाहिए है जहां गलबात होवे तो उसे ही टॉपिक ते होवे जिसनू असी हुणे सुन के हटे हाँ ताकि वह साड़ी याद दे विच रहे। सर तूल चुक दिखेवा जीवन की विदना है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

बड़ी डूंगी बाज है। साड़ी कीती सेवा सिमरण ते गुरु की खुशी की मोहर लग गई है, किवें पता लगेगा? गुस्सा ना करियो, तुसी इत्थे घंटा डेढ़ आए हो, दो घंटे कीर्तन, गुरु की मोहर इत्थे लगी कि नहीं लगी किवें पता लगेगा? आखो सतनाम।

देवते ते शहीद सिंह जदों भी तेरा समा पूरा होगा ओ लियाणगे ते मेरे को नहीं लियाणगे तू गुरु नानक दे दरबार जाएगी सदीका को सतनाम ये गलती ना तेनू इत्थे ले आए ने मैनू कोई सेवा होवे दस मैं शरीर विच तेनू वापस भेजना है ये सच मैं सोची पै गया धर्म राज भी एक महापुरुषा दे लांगरी दी माता के हाथ जोड़दा होगा पढ़ जो कई बैठे होंगे कट्टड़ एक सुना।